0: हो नारायण क्यों कार्य विजय देव शकुनि शिविर
1: सब कार्य समस्त कांति उठे विश्वहिते कृष्णर अंतर कौरवंक संगे रही आलस्य विलासे फुलिकल विरतम महान कर्तव्य एई सुन चाहि देख अंतरिक्षे गांधार सेनर आत्मा करई चित्कार शुणिकी पारुछ वीर से कातर मर्मंतुद करुण विलाप
0: शयने स्वपने शुभे शुणि जागरणे गगन पवन थरे से करुण स्वरे पक्षी कंठ झरणार करुण मूर्छना एक ध्वनि एक स्वर शुणे सबुठारे किंतु किंतु निरुपाय निरुपाय मुही
1: निरुपाय तुम्हें विस्फोरण होइला कि पूर्वर शपथ गुरुवंश ध्वंस जग

0: 삼도 삼도 도쳐서나 덥도도이 다리로 미우다라 문다길이 서버
1: लक्ष्मी मुनि विष्णु पाठाराणी लक्ष्मी वंत तू मान गोविंद सत्पशु लक्षण युक्त होइचि तो ठारे तो पोतांके फुटी उठे लक्ष्य स्वर्ण पद्म तेणु मुहि विष्णु को बरजी आश्रय करिथिली वश्य तोर स्कंद देशे।

0: ଶୁଣିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 8:30 ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଧନାର ପୃଷ୍ଠାରେ କେବଳ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରେ।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी सटी और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर पूरी खबर।

0: मोहे।
1: अरे भाई दिन नहीं मंत्री की डाकले राजा चंद्रसेन बोले हे मंत्री विचक्षण बसंतु बसिकी मंत्री कहले हे मंत्री सुता परिणय।

0: राम राम
1: जय। अरे भाई आज्ञा प्रमाण विष्णु कुट माया तो हेगला सुदर्शन चक्र कले स्थान रहिले
0: समस्त अंगे लगे
1: भगवान विचार कले मोर तो सपक्षवादी के समस्ते तो विपक्ष नुहंती
0: निश्चय
1: एने कण ना दासी मान झी सुलक्षण को वेशभूषा कर
0: मेढ आनी ठिया कर
1: फोटो टा को सीना भाई देखी
0: किंतु वर्तमान प्रत्यक्ष देखुचंदी
1: भावुचंदी देखिकिरी
0: आहा
1: राजो।

0: 3.5 किलोमीटर लंबी आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का प्रावधान इसका मुख्य आकर्षण है, जो परियोजना के आर्थिक लाभों से परे रणनीतिक मूल्य जोड़ता है। इन सबका विवरण देने के लिए मैं हूं शहसियार खान और मेरे साथ हैं कौशिक राय। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आपका।
1: नमस्कार एंड वेलकम टू दिस स्पेशल ब्रॉडकास्ट। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल इनॉग्यूरेट द गंगा एक्सप्रेसवे इन हरदोई डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। The Ganga Expressway is a 594-kilometer long six-lane expandable to 8 lanes access-controlled greenfield high-speed corridor built at a total cost of around 36,230 crore. The expressway traverses through 12 districts of Uttar Pradesh, that is Meerut, Bulandshahr, Hapur, Amroha, Sambhal, Badayun, Shahjahanpur, Hardoi, Unnao, Rai Bareli, Pratapgarh and Prayagraj, thereby connecting the western, central and eastern regions of Uttar Pradesh through single seamless high-speed corridor. The key benefit of this Ganga Expressway is that it will significantly reduce travel time between Meerut and Prayagraj from the existing 10 to 12 hours to approximately 6 hours, enhancing ease of movement and efficiency in transportation.
0: माननीय प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद हरदोई उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जो कि देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा, 6 लेन जिसको 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है, एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर है, जिसका निर्माण लगभग 36,230 करोड़ रुपए की कुल लागत से किया गया है। यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरता है, जिससे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों को एक ही निर्बाध हाई स्पीड कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ा गया है। इस परियोजना से मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा का मौजूदा समय, जो कि लगभग 10 से 12 घंटे लगता है, घटकर 6 घंटे रह जाने की उम्मीद है, जिससे आवागमन में सुगमता और परिवहन में दक्षता में सुधार होगा। इस परियोजना की एक विशेषता यह है कि इसमें शाहजहांपुर जिले में 3.5 किलोमीटर लंबी आपातकालीन लैंडिंग व्यवस्था, जो कि हवाई पट्टी है, इसका निर्माण किया गया है। ये दोहरे उपयोग वाली अवसंरचना राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियों की मजबूती को बल देती है और आर्थिक लाभ के अलावा रणनीतिक महत्व पर भी इसमें जोर दिया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे एक प्रमुख आर्थिक गलियारे के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसके मार्ग में पड़ने वाले 12 जिलों में लगभग 2635 हेक्टेयर वर्ग में एकीकृत विनिर्माण और लॉजिस्टिक गलियारे विकसित किए जाएंगे। ये एक्सप्रेसवे लॉजिस्टिक लागत को कम करेगा, आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार करेगा और विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। बेहतर संपर्क व्यवस्था से किसानों को शहरी और निर्यात बाजारों पर अधिक और सीधी पहुंच मिलेगी, जिससे उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और ग्रामीण आय में वृद्धि भी होगी। इस परियोजना से पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, नए आर्थिक अवसर खुलने और पूरे क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होने की पूरी उम्मीद है। गंगा एक्सप्रेसवे राज्य में एक व्यापक एक्सप्रेसवे नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी के रूप में भी काम करेगा, जिसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जेवर लिंग एक्सप्रेसवे, फरुखाबाद लिंग एक्सप्रेसवे और मेरठ से हरिद्वार तक प्रस्तावित विस्तार सहित कई लिंक कॉरिडोर या तो चालू हैं या योजनाबद्ध है। यह उभरता हुआ एक्सप्रेसवे नेटवर्क उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक उच्च गति वाली सड़क कनेक्टिविटी का विस्तार करेगा, जिससे संतुलित क्षेत्रीय विकास संभव है। गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक परिवहन परियोजना ही नहीं, बल्कि एक परिवर्तनकारी पहल है, जो लॉजिस्टिक लागत को कम करेगी औद्योगिक निवेश को आकर्षित

0: सुरक्षित करेगी, कृषि और ग्रामीण आय को बढ़ावा देगी, रोजगार सृजित करेगी और पूरे राज्य में समग्र आर्थिक विकास को गति देगी। इसका उद्घाटन थोड़ी ही देर में माननीय प्रधानमंत्री हरदोई उत्तर प्रदेश में करेंगे।
1: And as we mentioned earlier, the Ganga Expressway project, the key highlight of it is the provision of a 3.5-kilometer long emergency landing facility, that is an airstrip in the Shahjahanpur district. This dual-use infrastructure enhances national security preparedness and adds a strategic value beyond economic benefits. The Ganga Expressway is envisioned as a major economic corridor with the development of integrated manufacturing and logistics corridors over approximately 2,635 hectares across 12 districts along its alignment. The expressway will reduce logistic costs, improve supply chain efficiency and boost manufacturing competitiveness. Improved connectivity will provide farmers with direct access to urban and export markets, facilitating better price realization and strengthening rural incomes. The project is also expected to boost tourism, unlock new economic opportunities and generate direct and indirect employment opportunities across the region. The Ganga Expressway will also serve as a backbone for a broader expressway network in the state, with several link corridors either operational or planned, including the Agra-Lucknow Expressway, the Jewar Link Expressway, Farukhabad Link Expressway and the proposed extension from Meerut to Haridwar. This emerging expressway grid will expand high-speed road connectivity across Uttar Pradesh from east to west and from north to south, enabling balanced regional development. The Ganga Expressway is not merely a transportation project but a transformative initiative that will reduce logistic costs, attract industrial investment, boost agriculture and rural incomes, generate employment and drive holistic economic growth across the state. In fact, the Prime Minister arrived in Uttar Pradesh yesterday from Sikkim and he participated in the Mahila Sammelan at Varanasi, his own parliamentary constituency, yesterday. And he laid the foundation stone of various development projects worth around 6,350 crore rupees in Varanasi. And this morning, the Honorable Prime Minister had darshan and performed puja at the Sri Kashi Vishwanath Temple in Varanasi. The Honorable Prime Minister is expected in Hardoi in just a short while for the inauguration of the Ganga Expressway.
0: Bilkul, Maniya Pradhan Mantri, ab se kuch der baad Hardoi mein jo Ganga Expressway hai, iska udghatan karenge. Isse pehle aaj subah Maniya Pradhan Mantri ne श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में पूजा अर्चना की और जैसा कि कौशिक ने बताया प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर भी हैं। कल प्रधानमंत्री बनारस पहुंचे थे जो कि वाराणसी है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री ने महिला सम्मेलन में भाग लिया और करीब 6,350 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आपको बता दें ये परियोजनाएं रेल, सड़क, जल, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और शहरी अवसंरचना पर सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई है। प्रधानमंत्री ने दो नई अमृत भारत एक्सप्रेसवे को हरी झंडी भी दिखाई जो कि बनारस पुणे और अयोध्या मुंबई की है और प्रधानमंत्री ने इन परियोजनाओं के बाद लोगों को संबोधित भी किया। माननीय प्रधानमंत्री ने जो महिला सम्मेलन है इसमें भाग लेकर करीब 1,050 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 48 पूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने विभिन्न सामुदायिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत 30 ग्रामीण पेयजल योजनाएं, चंद्रावती घाट का पुनर्विकास, सारनाथ के पास जो सारंगनाथ मंदिर का पर्यटन विकास और नागवा स्थित संत रविदास पार्क का सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्वार कार्य भी शामिल है। सार्वजनिक सेवाओं और खेलों में सुधार भी प्रमुखता से किए जा रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश कॉलेज में सिंथेटिक हॉकी टर्फ, रामनगर में 100 बिस्तरों वाला वृद्धाश्रम और भेलूपुर जल शोधन संयंत्र

में 1 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने तिब्बती अध्ययन केंद्रीय विश्वविद्यालय में सोवा रिगपा भवन और अस्पताल का उद्घाटन भी किया, जो कि आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के लिए काफी प्रचलित है। माननीय प्रधानमंत्री 2 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे में आज अब से कुछ देर बाद हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। जैसे ही उद्घाटन स्थल पर माननीय प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, आपको हम कार्यक्रम में सीधे लिए चलेंगे।

0: एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री इस वक्त कार्यक्रम स्थल पहुंच चुके, आइए आपको सीधे कार्यक्रम लिए चलते हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी का
2: Prime Minister has arrived at the venue where he will inaugurate the 594 kilometer long access control Greenfield Ganga Expressway in Hardoi, and the Honorable Prime Minister is greeting all the people who are present on the dais, including the Uttar Pradesh Governor Mrs. Anandibeen Patel and the Chief Minister of Uttar Pradesh Yogi Adityanath Ji, and other distinguished guests are present on the dais inauguration of the Ganga Expressway.
1: देश भर में विकास रूपी गंगा की अविरल धारा अपने पूरे वेग से प्रवाहित है। ऐसे युग पुरुष देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आपके उल्लास और ऊर्जा के साथ करतल ध्वनि के साथ स्वागत अभिनंदन है। आज के इस आयोजन में भक्त प्रहलाद की आस्था स्थली है ये, जो भगवान विष्णु के वामन और नरसिंह अवतार की भी पावन धरा है। ऐसे हरिद्वय यानी दो अवतारों वाली पुनीत भूमि पर वंदन अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का भी स्वागत अभिनंदन है। साथ ही स्वागत आप सबके करतल ध्वनि के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। देवियो सज्जनों, इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद जी की। उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और श्री ब्रजेश पाठक जी की भी उपस्थिति है। साथ ही यहां विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और विशाल संख्या में यहां उपस्थित जन समुदाय का आप सबका स्वागत अभिनंदन और वंदन है। देवियों सज्जनों, मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से, वे प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करके आप सबके करतल ध्वनि के साथ जीवनदायिनी मोक्षदायिनी मां गंगा का स्वरूप और साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे की भव्यता को इस स्मृति चिन्ह में प्रदर्शित किया गया है। अभिनंदन वंदन है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, देश की सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश को भय मुक्त कर नवनिर्माण और विकास की गंगा प्रवाहित करने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र अनुरोध है, वे इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2: And the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, will now
3: Bharat Mata Ki
2: gathering.
3: Bharat Mata Ki, Bharat Mata Ki, Bande, Bande, Bande, Gange Maya Ki, Gange Maya Ki. नमः पार्वती पतिये हर हर

आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके कर कमलों से, आपकी विराट सोच के अनुरूप देश के एक बड़े एक्सप्रेसवे में से एक गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन का एक कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। देवी सुरसरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे, मां गंगा के पैरेलल समानांतर उस विराट को छूने के लिए उत्तर प्रदेश के

आर्थिक विस्तार को एक नई उड़ान देने के लिए जिस एक्सप्रेस वे का शिलान्यास आपने दिसंबर 2021 में किया था, आज आपके कर कमलों से उसका ये भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर गंगा एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रही है, आपके विजन को इस जमीनी धरातल पर उतारकर आज उद्घाटन के इस भव्य कार्यक्रम के अवसर पर मैं आपका भक्त प्रहलाद और नरसिंह भगवान के अवतरण की इस पावन धरा पे हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हरदोई श्री हरि विष्णु के परम भक्त भक्त प्रहलाद के उद्धार की भूमि, 52 अवतार और नरसिंह अवतार की पावन धरा हरदोई में आज यह अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी, केंद्रीय मंत्री श्री जितेन्द्र प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, सुरेश कुमार खन्ना जी, नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, नितिन अग्रवाल जी, असीम अरुण जी, श्रीमती रजनी तिवाड़ी जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हरदोई, सांझापुर, उन्नाव, कन्नौज और फरुखाबाद से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आज गंगा एक्सप्रेसवे के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मां गंगा के आशीर्वाद से अब सिंचित इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, दिसंबर 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखी थी। वैश्विक महामारी कोरोना के उस कालखंड के दौरान इसके जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई करने के साथ ही इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और एक समय सीमा के अंदर इसे पूरा करने का विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश को दिया और पूरे देश के अंदर आज जब हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं तो उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे आवागमन को तो सरल बना ही रहा है बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। और ये तब हो पाया है जब प्रधानमंत्री जी के विजन को उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए स्पष्ट नीति और साफ नियत के अंतर साफ नियत से उसे प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हुआ। बहन और भाइयों, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश परिवारवाद और जातिवाद के जकड़न में
दंगों में, अराजकता में।

कर्फ्यू में माफिया की समानांतर चलने वाले उस अराजकता भरे माहौल में विकास की, रोजगार की, नए निवेश की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार का परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे का एक नेटवर्क, हाईवे, डिस्ट्रिक्ट वे और ग्रामीण सड़कों का 4 लाख किलोमीटर का एक बेहतरीन नेटवर्क हम सबको देखने को मिल रहा है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ, हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ, हर ब्लॉक और तहसील मुख्यालयों को 4 लेन और 2 लेन की सड़कों के साथ जोड़ करके 7 सिटी में मेट्रो और देश की पहली रैपिड रेल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों दिल्ली मेरठ के बीच में इस पूरे कॉरिडोर का उद्घाटन करके उन दूरियों को समेटने के साथ ही उत्तर प्रदेश की इस अनलिमिटेड पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया है आज वह जमीनी धरातल पर डबल इंजन सरकार की ताकत के रूप में, एक्सप्रेसवे के रूप में, रैपिड रेल के रूप में, इनलैंड वाटरवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर केवल यह एक्सप्रेसवे हमारी दूरी को ही कम नहीं कर रहे हैं बल्कि इन सभी पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यूपी के लिए स्वीकृत किया था वह भी है। और साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर इन एक्सप्रेसवे के माध्यम से अन्नदाताओं, किसानों की उन्नति के ये एक्सप्रेसवे बने हैं, युवाओं के रोजगार के एक्सप्रेसवे बने हैं, आस्था और संस्कृति के एक्सप्रेसवे हैं और प्रदेश की समृद्धि के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे 27 स्थानों पर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल क्लस्टर एंड लॉजिस्टिक हब डेवलप करने की कार्रवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। अगर हम केवल गंगा एक्सप्रेसवे पर देखेंगे 594 किलोमीटर का यह लंबा एक्सप्रेसवे, जिसपे केवल एक्सप्रेसवे पर ही हम लोगों ने 18,000 एकड़ लैंड अन्नदाता किसानों से लिया है और इस पर बनने वाले जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर और लॉजिस्टिक हम हैं इनमें भी लगभग 7,000 एकड़ लैंड अलग अलग स्थानों पर लेकर के नए निवेश और उसके माध्यम से नौजवानों के लिए नए रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज जिन 12 जनपदों में मेरठ से लेकर प्रयागराज तक विस्तृत इस एक्सप्रेसवे पर 12 जनपदों के जिन 1 लाख से अधिक किसानों ने लैंड उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दिया है, मैं उन सभी अन्नदाता किसानों के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने जो भी लैंड एक्विजिशन की पॉलिसी है उसके अंतर्गत इस पूरे अभियान को, विकास हो, उत्तर प्रदेश के अनलिमिटेड पोटेंशियल को प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण में हम भी योगदान दे सकें, उस विजन में उन्होंने भी अपना भरपूर योगदान दिया। आज उसी का परिणाम है कि एक्सप्रेसवे बन करके तैयार हुआ है और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिसका शिलान्यास किया गया था, ये बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री जी ने जो बार बार कहा है कि जिसका शिलान्यास करेंगे उसका उद्घाटन भी करेंगे, आज उसका उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय

0: प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
1: उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वागत उद्बोधन दे रहे थे और परियोजना के बारे में जानकारी दे रहे थे।
2: वे अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने की कृपा करें, हम सब साक्षी बने इस ऐतिहासिक क्षण का।
3: Access control Greenfield Ganga Expressway in Haridwar, built at a cost of around 36,230 crore rupees, the Ganga Expressway will significantly reduce travel time between Meerut and Prayagraj.
4: बेहतर रास्ते सिर्फ दूरी नहीं, सपनों को भी करीब लाते हैं। सुपर फास्ट सड़कें केवल यात्रा को आसान नहीं बनाती, बल्कि गांवों और शहरों को जोड़कर रोजगार, व्यापार और औद्योगिक प्रगति को बढ़ावा भी देती हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इसी विजन के अनुरूप रिकॉर्ड समय में बनाया गया है नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पर्याय, नए उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेस वे।
5: 21वीं सदी में किसी भी देश की प्रगति के लिए, किसी भी प्रदेश की प्रगति के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी सबसे बड़ी जरूरत है। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के विकास को गति भी देगा और यूपी को शक्ति भी देगा।
4: माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के परिवर्तनकारी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से कभी जो सफर घंटों में तय होता था, अब वो मिनटों में हो रहा है पूरा। डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को बनाया है एक्सप्रेसवे स्टेट। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है गंगा एक्सप्रेसवे। अब देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक हिस्सेदारी हो गई है। मेरठ के ग्राम बिजौली से प्रारंभ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से होकर प्रयागराज के ग्राम जूडापुर दांदू में समाप्त होने वाले गंगा एक्सप्रेसवे से आच्छादित हैं 12 जनपद और 518 ग्राम।
0: मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने का लगभग 600 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे न केवल एक्सप्रेसवे यातायात की दृष्टि से होगा, बल्कि इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने, रोजगार के सृजन को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का एक बड़ा अभियान होगा।
4: 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से डिजाइन किए गए गंगा एक्सप्रेसवे पर 14 दीर्घ सेतु, 165 लघु सेतु, 7 आरओबी, 32 फ्लाईओवर, 453 अंडरपास, 795 बॉक्स कलवर्ट के साथ ही महत्वपूर्ण मार्गों से 21 स्थानों पर इंटरचेंज, यात्रियों की सुविधा के लिए 9 स्थानों पर जन सुविधा परिसर का कराया गया है निर्माण। स्थानीय जनमानस के सुविधाजनक आवागमन के लिए गंगा एक्सप्रेसवे के दोनों ओर कराया गया है 737 किलोमीटर सर्विस रोड का निर्माण। सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा के लिए हरेक किलोमीटर पर लगाए गए हैं सोलर ऊर्जा से संचालित हाईटेक स्मार्ट कैमरे। आपातकालीन परिस्थितियों में भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन की लैंडिंग व टेक ऑफ के लिए बनाई गई है एयर स्ट्रिप। देश में एक्सप्रेसवे पर सबसे अधिक एयर स्ट्रिप के मामले में भी उत्तर प्रदेश बन गया है नंबर वन। औद्योगिक गलियारा परियोजना के अंतर्गत गंगा एक्सप्रेसवे के सन्निकट 12 जनपदों में स्थापित किए जा रहे हैं इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स। सामाजिक समृद्धि, सामरिक सुरक्षा और औद्योगिक उन्नति का पर्याय गंगा एक्सप्रेसवे समग्र विकास की वो नई सुबह है जिसके हर मोड़ पर तरक्की कर रही है आपका इंतजार। काम दमदार डबल इंजन सरकार।
1: माननीय प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट
2: हार्दिक बधाई आप सभी को।

0: किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया।
1: आइया सबके सम्मान और कृतज्ञता से भरे करतल ध्वनि के साथ निवेदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उनके संबोधन के लिए।
2: प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी विल एड्रेस द गैदरिंग एट हरदोई।
1: माननीय प्रधानमंत्री महोदय,
3: भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यहां के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश जी पाठक, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी जितिन प्रसाद जी, पंकज चौधरी जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं भगवान नरसिंह की इस पुण्य भूमि को प्रणाम करता हूं। यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मां गंगा कृपा बहाती हुई गुजरती है, इसलिए ये पूरा क्षेत्र ही तीर्थ से कम नहीं है। और मैं मानता हूं यूपी को एक्सप्रेस वे का यह वरदान, ये भी मां गंगा का ही आशीर्वाद है। अब आप कुछ ही घंटों में संगम भी पहुंच सकते हैं और काशी में बाबा के दर्शन करके भी वापस आ सकते हैं। साथियों, जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से यूपी की और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेसवे, ये यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। ये भी अद्भुत संयोग है कि पिछले 4-5 दिनों में मैं मां गंगा के सानिध्य में ही रहा हूं। 24 अप्रैल को मैं जब बंगाल में था तो मां गंगा के दर्शन किए थे, और फिर कल तो मैं काशी में था, आज सुबह ही फिर बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा और मां गंगा के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और अब मां गंगा के नाम पर बने इस एक्सप्रेस वे के लोकार्पण का अवसर मिला है। मुझे खुशी है कि यूपी सरकार ने इस एक्सप्रेस वे का नाम मां गंगा के नाम पर रखा है। इसमें विकास का हमारा विजन भी झलकता है और हमारी विरासत के भी दर्शन होते हैं।

मैं यूपी के करोड़ों लोगों को गंगा एक्सप्रेसवे की बधाई देता हूं। साथियों, आज लोकतंत्र के उत्सव का भी एक अहम दिन है। बंगाल में इस समय दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और जो खबरें आ रही हैं उनसे पता चलता है कि बंगाल में भारी मतदान हो रहा है। पहले चरण की तरह ही जनता वोट देने के लिए बड़ी संख्या में घरों से निकल रही है। लंबी लंबी कतारों की तस्वीरें सोशल मीडिया में छाई हुई है। पिछले 6-7 दशक में जो नहीं हुआ, जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी, वैसे निर्भीक वातावरण में बंगाल में इस बार वोटिंग हो रहा है। लोग भय मुक्त होकर वोट दे रहे हैं। ये देश के संविधान और देश के मजबूत होते लोकतंत्र का पुण्य प्रतीक है। मैं बंगाल की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि वो अपने अधिकार के प्रति इतनी सजग है, बड़ी संख्या में वोटिंग कर रही है। अभी वोटिंग खत्म होने में कई घंटे बाकी है। मैं बंगाल की जनता से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र के इस पर्व में ऐसे ही उत्साह से भाग लें। साथियों, कुछ समय पहले जब बिहार में चुनाव हुए तो बीजेपी एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की थी, एक इतिहास रच दिया था। अभी अभी कल ही गुजरात में महानगरपालिका, नगरपालिका, जिला पंचायतें, नगर पंचायतें, तहसील पंचायत, इन सब के चुनाव के नतीजे आए हैं। और आप मेरे उत्तर प्रदेश वासियों को खुशी होगी, 80 से 85% नगर पालिका और पंचायतों भाजपा ने जीत ली है। मुझे विश्वास है इन 5 राज्यों के चुनाव में भी भाजपा ऐतिहासिक जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। चार मई के नतीजे विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेंगे, देश के विकास की गति को नई ऊर्जा से भरेंगे। साथियों, देश के तेज विकास के लिए हमें तेजी से आधुनिक

इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण करना है। दिसंबर 2021 में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने मैं शाहजहांपुर आया था। अभी पांच साल से भी कम समय हुआ है और आप देखिए देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में शुमार यूपी का सबसे लंबा ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेसवे ये पांच साल के भीतर भीतर बनकर तैयार हो गया है। आज हरदोई से इसका लोकार्पण भी हो रहा है। यही नहीं एक और गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हुआ है तो साथ ही इसके विस्तार की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से आगे बढ़कर हरिद्वार तक पहुंचेगा। इसके और बेहतर उपयोग के लिए फरुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कर इसे अन्य एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। ये है डबल इंजन सरकार का विजन, ये है भाजपा सरकार के काम करने की स्पीड, ये है भाजपा सरकार के काम का तरीका। भाइयों बहनों, कुछ ही दिन पहले मुझे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लोकार्पण का अवसर मिला था। तब मैंने कहा था कि नए बनते एक्सप्रेसवे विकसित होते भारत की हस्तरेखाएं हैं और ये आधुनिक हस्तरेखाएं आज भारत के उज्जवल भविष्य का जयघोष कर रही है। साथियों, अब वो दौर चला गया जब एक सड़क के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता था। एक बार घोषणा हो गई तो वर्षों तक फाइलें चलती थी, चुनाव के लिए पत्थर लग जाता था, उसके बाद सरकारें आती रहती थी जाती रहती थी लेकिन काम का कुछ अता पता नहीं लगता था। कभी कभी तो पुराने फाइलें ढूंढने के लिए बड़े बड़े अफसरों को दो दो साल तक मेहनत करनी पड़ती थी। डबल इंजन सरकार में शिलान्यास भी होता है और तय समय में लोकार्पण भी हो करके रहता है। इसलिए ही आज यूपी के एक्सप्रेसवे से भी ज्यादा रफ्तार अगर कहीं है तो वो यूपी के विकास की रफ्तार ही है। साथियों, वो एक्सप्रेसवे केवल एक हाई स्पीड सड़क नहीं है, ये नई संभावनाओं का, नए सपनों का, नए अवसरों का गेटवे है। गंगा एक्सप्रेसवे करीब 600 किलोमीटर लंबा है। पश्चिमी यूपी में मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल और बदायूं, मध्य यूपी में शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, पूर्वी यूपी में प्रतापगढ़ और प्रयागराज, इनके आसपास के दूसरे जिले गंगा एक्सप्रेसवे इससे इन इलाकों के करोड़ों लोगों का जीवन बदलेगा। साथियों, इन क्षेत्रों को गंगा जी और उनकी सहायक नदियों की उपजाऊ मिट्टी का वरदान मिला है।

लेकिन पहले की सरकारों ने जिस तरह किसानों की उपेक्षा की, उसके कारण किसान परेशानियों के में ही घिर करके रह गए। यहां के किसानों की फसलें बड़े बाजारों तक नहीं पहुंच पाती थी, कोल्ड स्टोरेज की कमी थी, लॉजिस्टिक का अभाव था, किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलता था। अब उन कठिनाइयों का समाधान भी तेजी से होगा। गंगा एक्सप्रेसवे से कम समय में बड़े बाजारों तक पहुंच मिलेगी। यहां खेती के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, इससे हमारे किसानों की आय बढ़ेगी। साथियों, गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के एक छोर को दूसरे छोर से तो जोड़ता ही है, ये एनसीआर के असीम संभावनाओं को भी करीब लाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां तो दौड़ेगी ही, इसके किनारे नए औद्योगिक अवसर विकसित होंगे। इसके लिए हरदोई जैसे दूसरे जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। इससे हरदोई, शाहजहांपुर, उन्नाव समेत सभी 12 जनपदों में नए उद्योग आएंगे। अलग अलग सेक्टर्स जैसे फार्मा, टेक्सटाइल आदि के क्लस्टर्स विकसित होंगे। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। साथियों, हमारे ये युवा मुद्रा योजना और ओडीओपी जैसी योजनाओं को उसकी ताकत से खुद भी नए नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। यहां छोटे उद्योग एमएसएमईज को बढ़ावा मिल रहा है, बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा से उनके लिए भी नए रास्ते खुलेंगे। मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, संभल का हैंडीक्राफ्ट, बुलंदशहर के सिरेमिक, हरदोई का हैंडलूम, उन्नाव का लेदर, प्रतापगढ़ के आंवला प्रोडक्ट्स, ये सब बड़े स्केल में देश दुनिया के मार्केट में पहुंचेंगे। लाखों परिवारों के इससे आमदनी बढ़ेगी। आप मुझे बताइए, क्या पुरानी सरकार में हरदोई, उन्नाव जैसे जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की कल्पना तक हो सकती थी क्या? हमारे हरदोई से भी एक्सप्रेसवे गुजरेगा, ये कोई सोच सकता था क्या कभी? ये काम केवल भाजपा सरकार में ही संभव है। साथियों, पहले यूपी को पिछड़ा और बीमारू प्रदेश कहा जाता था, वही उत्तर प्रदेश आज $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन इसके पीछे उतनी ही बड़ी तैयारी भी है, क्योंकि यूपी के पास इतनी असीम क्षमता है, देश की इतनी बड़ी युवा आबादी का पोटेंशियल यूपी के पास है। इस ताकत का इस्तेमाल हम यूपी को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कर रहे हैं। यूपी में नए उद्योग और कारखाने लगेंगे। यहां जब बड़ी मात्रा में निवेश आएगा, तभी यहां आर्थिक प्रगति के दरवाजे खुलेंगे, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भाइयों बहनों, इसी विजन को केंद्र में रखकर बीते वर्षों में लगातार काम हुआ है। आप सब खुद भी महसूस कर रहे हैं, जिस यूपी की पहचान पहले पलायन से होती थी, आज उसे इन्वेस्टर समिट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जाना जा रहा है। यूपी की इन्वेस्टर समिट में देश और दुनिया से कंपनियां आती हैं। यूपी में हजारों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। आज अगर भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान यूपी का है। आज भारत जितने मोबाइल बना रहा है, उसमें आधे मोबाइल हमारे यूपी में बन रहे हैं। अभी कुछ ही हफ्ते पहले मैंने नोएडा में सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास भी किया है। साथियों, आप सब जानते हैं एआई के इस दौर में सेमीकंडक्टर कितनी बड़ी फील्ड बनाती जा रही है। यूपी उसमें भी लीड लेने

0: के लिए आगे बढ़ रहा है। भविष्य में असीम अवसरों वाला बहुत बड़ा क्षेत्र यूपी के लोगों के लिए खुल रहा है। साथियों, उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास आज भारत की सामरिक ताकत भी बन रहा है। आज देश के दो डिफेंस कॉरिडोर में से एक यूपी में है। बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनियां यहां अपनी फैक्ट्री लगा रही है। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें जिनका लोहा दुनिया मानती है आज वो यूपी में बन रही है। रक्षा उपकरणों के निर्माण में जो छोटे छोटे पार्ट चाहिए होते हैं उनकी सप्लाई के लिए एमएसएमई को काम मिलता है। इसका बहुत बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को हो रहा है। छोटे छोटे जिलों में भी अब युवा बड़े बड़े उद्योगों से जुड़ने का सपना देख सकते हैं। साथियों, आज उत्तर प्रदेश इतनी तेज गति से विकास कर रहा है क्योंकि यूपी ने पुरानी सियासत को भी बदला है और नई पहचान भी बनाई है। आप याद करिए, एक समय यूपी की पहचान गड्ढों से होती थी। आज वही यूपी देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वेज वाला प्रदेश बन चुका है। पहले यहां पड़ोस के जिले तक जाना भी बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अब तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हो चुका है। गंगा एक्सप्रेस वे से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुछ ही घंटों की दूरी पर है। भाइयों बहनों, हमारा उत्तर प्रदेश भगवान राम और भगवान कृष्ण की धरती है, लेकिन पिछली सरकारों ने अपनी करतूतों के कारण अपराध और जंगल राज को यूपी की पहचान बना दिया था। यूपी के माफियाओं पर फिल्में बनती थी, लेकिन अब यूपी की कानून व्यवस्था का देश भर में उदाहरण दिया जाता है। भाइयों बहनों, संसाधनों का बंदरबांट करने वाले जिन सपाहियों के हाथ से सत्ता गई है उन्हें यूपी की ये प्रगति पसंद नहीं आ रही है। वो एक बार फिर यूपी को पुराने दौर में धकेलना चाहते हैं। वो एक बार फिर समाज को बांटना और तोड़ना चाहते हैं। साथियों, समाजवादी पार्टी विकास विरोधी भी है और नारी विरोधी भी है। अभी बीते दिनों देश ने एक बार फिर सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों का असली चेहरा देखा है। केंद्र की एनडीए सरकार संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन लेकर आई थी। अगर ये संशोधन पास हो जाता तो साल 2029 के चुनाव से ही महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण मिलता। बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें सांसद विधायक बनकर दिल्ली लखनऊ पहुंचती, वो भी किसी और वर्ग की सीटें कमी हुए बिना। लेकिन सपा ने इस संशोधन बिल के खिलाफ वोट किया। साथियों, इस बिल से सभी राज्यों की सीटें भी बढ़ती हैं। हमने संसद में साफ साफ कहा था सभी राज्यों की सीटें एक ही अनुपात में बढ़ेगी, लेकिन यूपी को गाली देकर पॉलिटिक्स करने वाली डीएमके जैसी पार्टियां, उन्हें इस बात पर आपत्ति थी कि यूपी की सीटें क्यों बढ़ेगी। आप देखिए, समाजवादी पार्टी संसद में उन्हीं के सुर में सुर मिला रही थी। ये सपा वाले यहां से आपके वोट लेकर संसद जाते हैं और संसद में यूपी के लोगों को गाली देने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए यूपी के लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी कभी सुधर नहीं सकती है, ये लोग हमेशा महिला विरोधी राजनीति ही करेंगे।
1: दलंक ठारु बंडा एवं कोयंग को जाए सबुरी भाषा रे
2: केवल आकाशवाणी।